0: Alive 90.5. Around the world.
1: Around the globe.
0: Streaming live 24/7.
1: Alive905.com.au.
2: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.hartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
3: Looking to stay connected with the Hills Shire? Discover Hills.Sydney, your go-to digital magazine for local news, politics, events and community stories. Whether you're a local business aiming to reach a wider audience or eager to stay informed, Hills.Sydney is your platform. Advertise with us and be part of a thriving digital community. Visit www.hills.sydney today. Hills.Sydney, where community comes to life. Station sponsor.
4: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. और जो सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ मेरे साथ पिछले हफ्ते हुआ वो था मैंगो फेस्टिवल. तो इंडियन कॉन्सुलेट्स ने, आपको पता है, एक जिन्होंने भी लाइन लगाई है बाहर, आधी सिडनी की इंडियन पॉपुलेशन वहाँ बाहर खड़ी थी कासल हिल में 21 जून को जब होने वाला था मैंगो फेस्टिवल, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि चीज़ें स्टक हो गई थी क्वारंटीन में, मैंगोज़ रिलीज़ नहीं हुए जैसे रिलीज़ होना चाहिए था. लेकिन इंडियन कॉन्सुलेट ने जैसे ही मैंगोज़ रिलीज़ हुए, सब लोग को, जो जिन्होंने वहाँ रजिस्टर किया उन सब लोग को एक ईमेल आया कि भाई हम एक मैंगो टेस्टिंग कर रहे हैं और आपको गिफ्ट में दे रहे हैं मैंगोज, और आप प्लीज़ आएँ और हमारी शोभा बढ़ाएं, यहाँ आके हमसे मिलें और हमारे तो मैंगो का बात का नाम सुनते ही हम सब लोग तो तैयार हो गए पहुंचने के लिए. मैं तो ऑफिस गई थी उस दिन स्पेसिफिकली, ताकि आजकल तो आधा दिन वर्क फ्रॉम होम, आधा दिन हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आधा दिन हम ऑफिस जाते हैं. तो ये बार तो मैंने सोच लिया था कि भाई मैंगो फेस्टिवल हो रहा है तो जाना है. तो 1 जुलाई को पहुंचे हम इंडियन कॉन्सुलेट सिडनी में, जो कासल रे स्ट्रीट में है. वहाँ पहुँचने के बाद हमें मैंगोज़ के डिफरेंट वैरायटीज़, सारे मैंगोज़ वैसे रिलीज़ नहीं हुए थे क्वारंटीन से, तो जो रिलीज़ हुए जैसे मल्लिका था, अल्फांजो था, केसर, और फिर तोतापुरी, और एक सिंदूरी, एक और यू नो, इन सब का उन्होंने एक तो लस्सी बनाया था, हर एक मैंगो से लस्सी बना के हर एक टेबल पे रखा था, और मैंगोज़ को कट करके सर्व कर रहे थे कि हम टेस्ट करें सारे मैंगोज़. और भाई मैं पहुंच गई इंडिया वापस, इतने सारे मैंगोज एक साथ, वाज अमेजिंग. जो मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं छोटी बच्ची हूँ और मेला लगा हुआ है और इतना फ्लेवरफुल मैंगोज, और इतने मतलब, हाँ देखिए जो फ्रेश मैंगोज की बात अलग है, लेकिन जो वहाँ सर्व हुआ था इंडिया की काफ़ी याद आ गई, क्योंकि वो वैसा मैंगोज, वो फ्लेवर्स जो बचपन का याद, बचपन की याद दिला देता है, वो कहीं और मिलता नहीं है. तो बहुत ही मज़ा आया वहाँ. बहुत काफ़ी लोग आए थे, आई थिंक 100-200 के हिसाब से तो लोग आए होंगे. बहुत लोग आ नहीं पाए क्योंकि वीकडे था, लेकिन जो लोग आए थे उन सब लोगों ने काफ़ी मज़ा किया और काफ़ी मैंगोज भी टेस्ट किए. वहाँ से मैंने कुछ लोगों से बात भी किया था, तो ये एक जो जोलिन करके आए थे वेस्टमीड से, उनकी बात सुनिए.
5: अच्छा, मैं अभी बात कर रही हूँ जोलिन, जो वेस्टमीड से हैं और वो भी आम के दीवाने हैं, और वो आज आए हुए हैं इंडियन कॉन्सुलेट में आम टेस्टिंग करने. तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था.
6: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जॉलिन है, और जैसे कि इन्होंने बताया मैं बिग टाइम मैंगो लवर हूं. जब 21 जून को ये होना था इवेंट, आई वाज सो एक्साइटेड, और मैं इतना सब कवर कर रहा था अपने चैनल से भी, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ था. तो आई वाज डेस्परेटली वेटिंग फॉर दिस डे, और यहाँ पे आके जो इंडियन आर्म्स की जो मतलब वैरायटीज देखने को मिली है, और स्पेशली क्योंकि मैं गुजरात से हूँ तो केसर देख के मेरा दिल भर गया नानी के घर की याद आ गई, ऐसा हो गया
5: नहीं यहाँ तो बहुत सारे हैं, मैंने अभी तक बाकी के टेस्ट नहीं किए हैं, लेकिन बहुत सारे वैरायटीज हैं और याद आ जाती है
6: बिल्कुल बिल्कुल वो खुशबू मतलब लेते ही आप इंडिया पहुंच जाते हैं।
5: तो थैंक यू सो मच।
6: थैंक यू।
4: तो ये थे जोलिन जो वेस्टमीड से थे, जो आए थे, जो कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, जो आए थे वहाँ मैंगो के बारे में देखने, पूरा वीडियो बनाने, और उन्होंने सारे वीडियोस के फ़ोटो लिए, सारे मैंगोज़ के फ़ोटो लिए, और केसर टेबल के सामने ही खड़े थे ज़्यादातर सो पता चल रहा था कि हर एक मैंगो का जो जिनको पसंद है वो ही टेबल के आसपास मंडरा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा था। और मैंने बाकी लोगों से भी बात किया था, वहाँ कौंसिल जनरल जानकी रामन जी से बात किया, फिर वॉरेन कर भी आए थे जो एमपी हैं, फिर दर्शक मेहता जी आए थे चेपल फाउंडेशन से, तो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सुनिएगा। और हमने काफ़ी वो जो एक्साइटमेंट होता है मैंगो के बारे में, और वो जो प्यार जो भूल गया था, जो ख़त्म हो गया, जिसके बारे में सब लोग नाराज़ थे उस दिन, वो नाराज़गी सारी मैंगो ने ख़त्म कर दी पिघल सारी नाराज़गी पिघल गई, और सब लोग बड़े चाव से बच्चों की तरह मैंगो टेस्टिंग कर रहे थे। तो ये सुनिए बाकियों के बाकी क्या कहते हैं।
1: मैं बात कर रही हूँ काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया सिडनी में जानकी रामन जी के साथ, और मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो मैंगो फेस्टिवल आपने ऑर्गेनाइज किया, आप इंग्लिश में या तमिल में जैसे आपको कन्वीनियंट है आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंगो फेस्टिवल क्या मोटिवेट किया, व्हाट मोटिवेटेड यू टू क्रिएट दिस फेस्टिवल इन सिडनी?
7: सी दिस मैंगो फेस्टिवल आई हैव बीन थिंकिंग फॉर लास्ट 2 इयर्स, बट लास्ट ईयर आई हैड मिस्ड द सीजन टू ब्रिंग द मैंगोस, देन आई थॉट दैट ओके इन द नेक्स्ट सीजन दैट आई शुड ब्रिंग मैंगोस टू ऑस्ट्रेलिया टू इंट्रोड्यूस दिस यू नो ब्यूटीफुल वैरायटीज ऑफ इंडियन मैंगोस टू Indian community as well as the Australians in Australia. Mm-hmm. Then, you know, we started contacting various people in India to see how we can bring mangoes from India, from directly from the farmers through, of course, the importers and exporters. Started this work, you know, since March. Mm-hmm. We spent about 2-3 months, you know, contacting and understanding the issues, understanding the procedures on bringing the mangoes. Once we were clear that, okay, we could bring mangoes, then I thought, okay, let us announce it and then make it as a first Indian mango festival in Sydney. Right. That's what it started. That's it's a big ambition. And there is some other motives also, you know, behind organizing this festival. Mm-hmm. Because the second generation Indians living in Australia would be able to appreciate and taste the Indian mangoes in Australia. That is most important. The other thing is to, you know, encourage the Indian growers in India, then they can find a market as Australian market where, you know, they can target, you know, not target, but send their mangoes to Australian, you know, buyers.
1: Yeah, no, that is great. And honestly, tasting all the mangoes reminded me of India, being in India and having the mangoes. So that is really amazing. Thank you for organizing this. We hope to see more of these events in the future.
7: Yeah, there are, you know, this encourages, you know, various importers in Australia to bring mm-hmm. mangoes. I'm sure there is one consignment coming next week from India, I'm told by some importer. Similarly, you know, this would definitely, you know, motivates more, you know, importers. To challenge this journey. Thank you.
1: Thank you so much. मैं वीना बात कर रही हूँ वॉरेन कर्बी जी के साथ, ये रिवरस्टोन के एमपी हैं. Thank you for talking with me, Warren.
8: Thank you.
1: I do a show called India Connect on Alive 90.5,
8: yep.
1: And it was fancy meeting you at the Mango Festival. I wanted to get your thoughts on what did you think of the festival and what mangoes did you try and how did you like them?
8: Look, the Mango Festival was fantastic. I'm a big, big fan of mangoes. And I know about the disappointment of the Mango Festival that was organized for the Hills and things being caught up in quarantine. And for the Consul General to then take it to this level and invite me along to come to the Mango Festival here at the Sydney Consulate in Sydney was a fantastic thing. And I think it's a real opportunity for Australians. Like many Australians, as I said earlier, I love mangoes. And these varieties are quite different from the ones that we are used to having here in Australia. And it actually opens up the opportunity for even greater bilateral relationships between India and Australia, by offering products that we are familiar with, we know they align with Australian taste buds, and it brings a value add in a season where we're not used to getting our mangoes in. So all up, I think this is a fantastic idea. It's a fantastic festival, and it's a great credit to Sydney Consul General, Dr. Janaki Raman, for the investment of time and energy he's put into putting this festival on.
1: Yeah, I agree with you. And I think, you know, coming here, you've been to Mumbai and different places you mentioned in India.
8: Yeah, yeah.
1: So have you tasted the mangoes there?
8: I have. I must admit, I'm a bit of a fan of the kasar from Gujarat.
1: Yeah.
8: But on the sweeter side, I think that would be a great mango to have with desserts, with ice cream in particular. My travels through India, I've travelled extensively through the centre and down through the southern states, and had the opportunity to taste a lot of produce, a lot of cooking through there. And I think I'm a big believer that the bilateral relationship between India and Australia is one that can genuinely change the globe, and one that is fledgling right now. It is only at its very beginning. We've increased trade from 30 billion to 50 billion over the last couple of years.
1: Wow.
8: Our new High Commissioner here in Australia from India has said that he's expecting for that to increase again to 100 billion by the time that he has left. So there is enormous opportunities for both Australian businesses and Indian businesses to come together and complement one another. And the Mango Festival is just a microcosm of the opportunities that exist.
1: Oh, that's great. Thank you for that. Thank you for sharing your thought. And thank you for talking with Alive 90.5.
8: No worries. Great radio show.
1: मैं दर्शक मेहता जी से बात कर रही हूँ जो चेपल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और आए हुए हैं मैंगो फेस्टिवल में सर व्हाट आप मैंगो फेस्टिवल पहले तो बताइए मैंगो के साथ आपकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं
9: वेल आई एम वन ऑफ द ओरिजिनल एजिटेटर्स फॉर इंपोर्ट ऑफ मैंगोज इनटू ऑस्ट्रेलिया I've done that for about 30-odd years, at least 25 years that I can remember, and with 6 consul generals. And finally, it's great to see that Janaki has succeeded where others struggled to. So this is a fantastic initiative.
1: Yeah.
9: I think hundreds of people have come here and enjoyed. So have I. And I just think that it's going to be a very high barrier for the consul generals who follow to pull off an event like this.
1: So a benchmark has been set.
9: I think more than a benchmark, it's a huge hurdle.
1: Okay. But we do hope and pray that there are more consul generals who bring more mangoes.
9: Exactly. An event of this kind is never easy to organize. It's very easy to criticize because other authorities are involved. You know, the government of India is involved, exporters there in India, importers there in Australia, and most importantly, Biosecurity Australia and the customs are involved.
1: Yes.
9: Plus, you have to get all the logistics right and inform people and eat. And this is a perishable food.
1: Yes.
9: So you have to get all of that right to be able to pull this off.
1: That is very true. And like you rightly said, they've done a great job. And I'm so glad I came today.
9: Oh, good. So am I.
1: Thank you so much for talking to Alive 90.5.
4: सो जैसे आपने सुना ये सिर्फ 3 लोग 4 लोगों से मेरी ठीक से बात हो पाई क्योंकि बाकी सब लोग तो काफ़ी मगन थे मैंगो में तो जिन्होंने भी एंजॉय किया आप अगर और कोई कमेंट्स देना चाहे तो दे सकते हैं लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंगो फेस्टिवल हुआ और ये एक अभी ट्रेंड बन गया है तो अगला गाना थोड़ा मैं मैंगो को डेडिकेट करती हूँ क्योंकि पल पल वो मेरे दिल के पास भी रहता है

OCI कार्ड्स का अनाउंसमेंट था, तो कहा गया है कि आप अपना OCI कार्ड ऑनलाइन OCI सर्विसेज पोर्टल में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन. फिर OCI के टैब में जाएं डैशबोर्ड पे, और जो एक OCI आपके लिए क्रिएट करेगा. और तो ये सिंपल है, आपको आपका जो OCI का वो बुकलेट है वो आपको कहीं लेके नहीं जाना पड़ेगा, और ये आप अपने अपने साथ अपने फ़ोन पे रख सकते हैं. ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, इमिग्रेशन भी आपके लिए जल्दी हो जाएगा. तो ये एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है इंडियन इमिग्रेशन की तरफ से, तो दिस इज़ समथिंग आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ देखें, और ये कैसे अगर आपको डाउनलोड करना है देख लीजिए. और जाने से पहले अगले सेक्शन के पहले आपसे बात करना चाहूँगी हेल्थ NSW का अपडेट. क्या आपकी आयु 65 साल या इससे अधिक है? इस बार सर्दी के गंभीर रोगों से अपनी और दूसरों की रक्षा करने के लिए टीकाकरण करवाएं. आपके लिए कौन सा टीका सही है इसके बारे में अपने GP या फार्मासिस्ट से आप बात करें. तो इसी के साथ दूसरा सेक्शन शुरू करते हैं. इसमें मैं थोड़ा एक ट्विस्ट देना चाहूँगी, और थोड़ा जो आजकल बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम में बात हो रही है इंडियंस के बारे में, बहुत काफ़ी निंदा हो रही है इसके बारे में. मैंने थोड़ा अपने कम्युनिटी में पूछा था कि उनका क्या सोच है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करना चाहूँगी. Alive 90.5. तो नमस्ते दोस्तों. तो आज मैंने रिसेंटली सुना कि इंडिया के जो लोग ट्रैवलर्स हैं तो ठीक से ट्रैवल नहीं करते हैं, और यू नो मॉन्यूमेंट में जाके नाच रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं मॉन्यूमेंट को जिसमें अपना नाम लिख रहे हैं. तो जहाँ तक नाचने की बात है, ये तो आजकल ट्रेंड है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नाचते हुए. तो और ये उनका एक डेडिकेशन समझ लीजिए आर्ट है. तो अगर आप कहीं एक मॉन्यूमेंट में जा रहे हैं जगह है, जब तक अगर आप दूसरों को परेशान ना करें तब तक मुझे लगता है ये इतनी गलत बात नहीं है. लेकिन आपकी आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में आप मुझे ज़रूर मैसेज करें. मैं जानना चाहती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में. ये सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत लोग अपनी अपना जो खुश नहीं है इसके बारे में कि ये क्यों हो रहा है या क्या ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग. तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहें, क्योंकि जब मैंने स्टेडियम में देखा है, एक ज्योति जी भी हैं जो मेरी दोस्त हैं, जो जिन्होंने कहा कि जैसे पूरे जब स्टेडियम में स्वीट कैरोलिना बजता है तो सब लोग मिलजुल के गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे गाने बजते नहीं हैं जब जैसे इंडिया के गाने बजते नहीं हैं. या फिर तो ये इसके बारे में बहुत सारे ओपिनियंस हैं. मैं इसको ना सही बोल रही हूँ ना गलत बोल रही हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में. क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक तरफी चीज़ नहीं है. पहले इसमें भी होता था, जैसे अमेरिकन टूरिस्ट या फिर चाइनीज़ टूरिस्ट जब जाते थे बहुत ज़्यादा. आजकल इंडिया में टूरिज़्म काफ़ी बढ़ गया है कोविड के बाद, तो हमारे भाई बंधु हर जगह पे ट्रैवल करने लगे हैं. तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन अगर इसकी आप किसी मॉन्यूमेंट को अगर आप ख़राब करते हैं तो ज़रूर गलत बात है. तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मैं जानना चाहती हूँ. और मैंने कुछ ग्रुप में भी पूछा था इसके बारे में, मैं बाद में भी बात करती हूँ, लेकिन कुछ ग्रुप में पूछा था, उन्होंने कुछ लोगों ने बताया था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया हम सब बहुत लोगों के लिए 10-15-20 जैसे मेरे लिए ऑलमोस्ट 20 साल से मैं यहाँ हूँ, तो ये घर है. तो इसमें हम कुछ अपना बदलाव लाए हैं और कुछ हम बदल गए हैं. तो पूरा ये कहना कि इंडियन कॉम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये गलत है. लेकिन आप भी बताएं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में इसके बारे में डिस्कस किया है, तो मैं दूसरों के भी थॉट्स लेना चाहूँगी इसके बारे में. तो आप मुझे अपना थॉट्स बताएं. उसके जाने से पहले लास्ट
जो इन मैसेज है एनएसडब्ल्यू हेल्थ की, आपकी वार्षिक फ्लू वैक्सीन आपको गंभीर रोगों से सर्वोत्तम सुरक्षा देता है। आज ही अपने जीपी या फार्मासिस्ट से इसके बारे में बात करें। healthdirect.gov.au/nsw-vaccine में जाएं और इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालें।

0: Looking for a fresh approach to real estate? At Bookfitch Estate Agency, we put people first, making the process smooth and stress-free. Whether it's selling your home, managing your investment, or finding your next move, we're here for you. Discover how property should feel professional, personal, and tailored to you. Visit us online at bookfitchestateagency.com.au or follow us on socials today.
1: Station sponsor.
2: Wexpo runs Western Sydney premium events and expos that bring together business leaders, community organisations and innovators to connect, learn and grow. Held at venues across the region, our events include exhibitor opportunities, expert panels, workshops and networking opportunities designed to spark ideas and build success. For all upcoming Wexpo events, visit wexpo.com.au. Wexpo is backed by the region's leading media organisation, Community Broadcast Network, with five newspapers published across Western Sydney. Sponsor.
3: You are listening to Alive 90.5, serving the Hills, Parramatta and Cumberland areas since 1992.
4: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में वीना शशि कुमार के साथ. अच्छा, हम बात कर रहे थे ये जो नया वेव शुरू हुआ है कि इंडियंस अपनी खुद की मनमानी करते हैं, अपना ये करते हैं, अपना चीज़ों को ख़राब करते हैं. ये वाला जो वेव शुरू हुआ है, ये पता नहीं क्यों शुरू हुआ है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँ कि जितने इंडियंस से मैं यहाँ मिली हूँ, हम हर जगह पे अपना छाप छोड़ते हैं और अच्छा छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं. तो पढ़ाई में, जैसे आप जानते ही हैं, हमारे इसमें पढ़ाई करना, एक डिग्री लेना या यू नो यूनिवर्सिटी जाना, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इंडियन डायस्पोरा है, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है यहाँ. ऑलमोस्ट माइग्रेशन, जो सेकंड जनरेशन माइग्रेंट्स हैं, हम क्लोज टू 1 मिलियन इंडियन ओरिजिन के ऑस्ट्रेलियंस हैं. ठीक है, तो हमने काफ़ी अपना काम किया है, काफ़ी छाप छोड़ा है अपने लिए, अपने कम्युनिटी के लिए और दूसरों के लिए भी. जैसे बहुत सारे फाउंडेशंस में हम चेयर कर रहे हैं, अच्छे फाउंडेशंस जो लोगों की भलाई करता है. जैसे मैंने दर्शक मेहता जी को आपने सुना था, वो चेपल फाउंडेशन के हैं जो होमलेस लोगों के लिए घर बनाते हैं. तो ये एंड ये सिर्फ इंडियन होमलेस नहीं है, तो बाकी के पूरा जो होमलेस कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए, उनकी मदद के लिए. और एक स्नेहा पटेल जी हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज किया है कि वो एक फिनेंस प्रोफेशनल हैं, यहाँ ऑलमोस्ट 20 साल से ले रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने जो इंडियन, और वो एक कल्चरल एम्बेसडर हैं. मैंने उनका इंस्टाग्राम पोस्ट देखा हुआ है जहाँ वो शोज़ होस्ट करती हैं, कल्चरल शोज़ होस्ट करती हैं. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि वो एक ऑस्ट्रेलियन, प्राउड ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं जो इंडियन हेरिटेज की हैं, जो मैं भी हूँ. मैं भी एक प्राउड ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हूँ लेकिन इंडियन हेरिटेज की हूँ, जो हम अपना कल्चर लेके ही आते हैं लेकिन इसको दूसरों में, दूसरों को इससे बॉदर नहीं करते हैं, जिसों को इससे परेशानी नहीं होती है. और हम, हमारे खाने, हमारे जो चीज़ों की तारीफ़ होती है, जैसे डांस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड डांस सीखना चाहते हैं, जो मेरे ऑफिस में हैं. सारे इंडियंस नहीं हैं लेकिन चाहते हैं बॉलीवुड डांस सीखें. तो एक अच्छा छाप, जो कल्चरल, जो खाने के बारे में जो छाप है, वो छोड़ना ज़रूरी है. लेकिन इसी बात में एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है ये है कि हमें जब हम कहीं जाते हैं, तो जैसे आप किसी के घर पे जाते हैं, अगर आप बैडली बिहेव करोगे तो आपका वो बैड बिहेवियर ही याद रहेगा. आपने जो अच्छी चीज़ की होगी उसका, वो तो आपको याद नहीं रहने वाला है, किसी को याद नहीं रहने वाला है अगर आपने बुरी चीज़ की. तो इसलिए ये एक शायद इन्फॉर्मेशन जो हम अपने इंडियन भाइयों बहनों को बता सकते हैं कि आप जहाँ जाएं, वहाँ की जो रिस्पेक्ट, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, उसकी डेफिनेटली रिस्पेक्ट करें. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मज़ा नहीं कर सकते. लेकिन स्नेहा पटेल जी का बाकी का भी इंफॉर्मेशन पढ़ लूं. वो कहती हैं कि उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन देखा है ऑस्ट्रेलियंस इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन और प्रॉस्पेरिटी में. इंडियंस का जो योगदान है, एंटरप्रेन्योरशिप हो या लीडरशिप, फिनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, हर जगह पे हम हैं और हम एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर जगह पे सोसाइटी में. और वो कल्चरल एम्बेसडर हैं और वो ये देख के काफ़ी खुश हैं और वो चाहती हैं कि हम एक बॉन्ड बिल्ड करें दोनों कल्चर्स के बीच में. तो थैंक यू स्नेहा जी फॉर शेयरिंग दिस.
5: अलाइव 90.5.
6: Something's changed with Mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02-811-8121. That's 02-811-8121. Santa Clara Home Care, care that feels like family. Station sponsor.
7: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: You are listening to Alive 90.5, serving the Hills, Parramatta and Cumberland areas since 1992.
4: नमस्ते और आपका स्वागत है लास्ट सेगमेंट. बस मेरा बात करने का टाइम ख़त्म हो गया है, बट थैंक यू फॉर लिसनिंग. और आप सोचें और मुझे बताएं आप क्या और सुनना चाहेंगे. लेकिन देखिए, ये जो इंडियन इसके बारे में जो बैकलैश हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, इसके हिसाब से मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी. मैं अभी रिसेंटली देख रही थी वो जापानीज़ लोगों की जो टूरिस्ट आए हुए हैं गेम देखने, और उन्होंने क्या किया. वो उनका लेकिन रेपुटेशन है ग्लोबली, उनका रेपुटेशन है, वो चीज़ें साफ स्वच्छ छोड़ के जाते हैं. उनके चाहे उनके प्लेयर्स हों, चाहे उनके लोग जो US गए थे जो जापानीज़ गेम देखने, उन्होंने वहाँ पूरा स्टेडियम की साफ़ सफाई की कि कोई भी चीज़ें पीछे ना छोड़ के जाएं. या फिर यू नो जो प्लेयर्स हैं उन्होंने लॉकर साफ स्वच्छ करके छोड़ के गए थे, जिसके बारे में उनको उनके लिए ना काफ़ी तारीफ़ निकल आती है उनको जो जब देखते हैं. और वो कहते हैं कि ये हम किसी ने हमें प्रेशराइज़ नहीं किया, हम सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि ये एक हमें सिखाया गया है कि जैसे हमने पाया, स्वच्छ पाया, क्लीन पाया, तो वैसे ही हम छोड़ के जाएंगे. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से याद रखते हैं. तो ये एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ अपने लोगों से जो ट्रैवल करते हैं, थोड़ी इस चीज़ के बारे में ध्यान रखें. लेकिन मुझे लगता है हमारे इंडियन ग्रुप है, जो मैं जितने लोगों को भी मैं जानती हूँ और जो अपने आप में ही काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, और हम एक बहुत ग्रोइंग पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया में, और हमें इस जो पावर के साथ कहते हैं ना, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और क्योंकि हम हमारे देश के एम्बेसडर हैं. जहाँ भी जाओ, आपको आप जितने भी ऑस्ट्रेलिया में रह लो कि आपका स्किन का कलर तो चेंज नहीं होने वाला है. तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, और अगर आप क्या कोई ओपिनियन है इसके बारे में तो मुझे बताएं. और मैं चाहती हूँ कि हम इसके बारे में ज़्यादातर बात करके देखें कि ये जो नेगेटिविटी छाया हुआ है हमारे नाम के आगे, ये इसको कैसे निकाल सकते हैं. और हम मज़ा लेना बुरी बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसके साथ हम क्या किसी को परेशान कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है. तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरे से बात करें, और मेरे से आपका जो अपकमिंग इवेंट्स है, या फिर आप कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, या आपने कुछ नया इजाज़ किया है, तो इसके बारे में मुझे बात करें. मैं चाहती हूँ कि आप और हम कनेक्ट करें. और मेरा फेवरेट गाने के साथ इस शो को ख़त्म करते हैं. थैंक यू, नमस्कार.